के लोग बसेंगे तेई रहनी रहे सोई मेरा ओ साहिब मैं उसका तेरा रहत बिना ने सिंह कहावे।

जे राक्षसां तो देवता नहीं बनाया तो फिर मेहर किस काम। पशु प्रेत मुगध को उतारे, पाहन पार उतारे, जेड़े पत्थर हिरदे सन पाहन सन, वली कंधारी वर्गे हंकारिया नू भी तार दिता, नीवा कर दिता। मन नीवा हो जावे तो रब दे नजदीक हो जाएगा। धन गुरु नानक पातशाह जिथे जिथे भी वेख्या के किसे कोलों सृष्टि नू दुख पहुंच रहा है, ता आपने पापी नू बुलाया नहीं, घर जाके तारिया, घर जाके मेरा कीतिया। धन गुरु नानक पातशाह संसार नू तारदे होए देव गंधार शहर विच गए। ये बड़ा जंगली अते पहाड़ा दा इलाका सी। ए लोक जीवां नू खांदे सन, कोई भी मनुख इना दे हाथ लग जावे उसका मास खाना। किस नगरी दा राजा देवलूत जो हर दम खून दा प्यासा रहिंदा सी, लखां देव इस दे अधीन सन। जेड़ा बंदा इस दी नजर विच आ गया ओ कदी बच नहीं सकया। इना दे अत्याचारां दा सारे इलाके विच बड़ा भय सी। गुरु नानक सच्चे पातशाह जगत जलंदे नू धारदे होए उस जंगल विच चलदे चलदे देव गंधार पहुंचे। मर्दाने बेनती कीती, महाराज बड़ा चंगा है, कुछ दिन ठहरांगे शहर विच, पहुंच के मेरी भूख भी मिटेगी, कोई पदार्थ भी मिलनगे शकन में। धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे मर्दानिया, ये लोग बड़े खतरनाक हैं, कौडा ता राक्षस एक सी ना, कौडा राक्षस इत्थे लखां राक्षस हैं, मानस जाति नू ए चुन चुन के खांदे हैं। कौडा ता मनुखां नू तेल विच तल के खांदा सी, पर ए मनुख दा मास कच्चा ही खा जांदे हैं, एदे भयानक हैं। महाराज फिर एहो जिहियां खतरनाक थावां ते तुसी आपे क्यों पहुंच जांदे? मर्दाना कंबिया, महाराज एदे भयानक शहर विच क्यों जा रहे हो? चलो वापस चलिए। गुरु नानक सच्चे पातशाह कह लगे ईश्वर कृपा करेगा, एही राक्षस तेरी तन मन करके सेवा करनगे, सीधे रस्ते आ जानगे। मर्दानिया तेरी भुख ने अनेकां दा भला कीता है, अनेकां नू उतारिया, अज भी किसे दा भला होवेगा। एही लोग तेरे चरण पूजनगे, तेनू 36 प्रकार दे भोजन लिया के छकाउणगे, तेरी सेवा करनगे। धन गुरु नानक पातशाह समाधि स्थित होके बैठ गए। इतने नू देव लूत असे उस दे राक्षी फौजां सामने आ खड़ोतियां, बड़े खुश हन कि अज एक शिकार नहीं तीन मिलते हैं। मर्दाने दा रंग पीला पैन लगा, एदियां भयानक शकलां, महाराज अज नहीं बचांगे, ये तो बड़े भयानक मनुख जापदे, बड़े भयानक राक्षस हैं। गुरु साहब कहन लगे तू जलाल विच रहो, अकाल पुरख दे सिमरन विच जुड़िया रहो, मन ना खिंडे ता कोई किसे दा कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। जिना नू बाणी दा आसरा है उना दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदे। कितनिया हनेरियां आउन तूफान आउन, जिना बूटिया नू जिना ब्रिशा नू सुमेर पर्वत दा आसरा है ना, चखड़ जाओ ना डोलनी, कितने चखड़ आ जान ओ फिर बूटे डोलदे नहीं, उना नू कोई हिला नहीं सकदा। इसे तरह मर्दानिया जिना नू करतार दा आसरा है,
अकाल पुरख का आसरा है, उन्हां दा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकदा। आहा किथे किथे गुरु नानक सच्चे पातशाह ने जाके

धन गुरु नानक पातशाह ने जो सारी सृष्टि दे दुख हरन लई संसार विच आए सन, अज इना देवां नूं वी देहां नूं वी देवत्यां दी नगरी बना दिता, धर्मशाला बनवाई। भाई दोनों टाइम सत्संग करया करो, भला करया करो, जीवां ते दया करया करो, तुहाडा भला होवेगा, तुहाडी नगरी सदा आबाद रहेगी। एडियां मेरा होर भी अनेकां ते कीतियां धन गुरु नानक पातशाह ने, जिथे भी मेर हो गई फिर कंगला पातशाह हो गया, जिथे भी चरण पा दिते ओ धरत पूजनीक हो गई, जिथे भी रेठे ते नदर पई ता अमृत हो गया। इसलिए जिथे मेहर तेरी।

हमारी जेबा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आना हर तुम बड अगम अथाह।

हमरी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कहिए तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कहिए जेबा एक तू समर्थ बड़ा मेरी मत छोड़ी ना मेरी मत छोड़ी हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी मत थोड़ी तू समर्थ बड़ा बड़ी हो बड़ा।

वटी हूँ बच्चा अदार तेरा मर्दबा, वटी हूँ बच्चा अदार तेरा मर्दबा। निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, सूचो सूचा सूचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ तेरो थान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ तेरो थान, तेरो थान, तेरा थान सुहारा रूप सुहारा।

गुरु साजी सिंधवाजी सरस्वती हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनों असीं ऋषभ कहने हैं सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसनों ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनों पा कहने हैं सारे गामा पा पंचमा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन्हां दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग का जो स्वरूप कायम हुंदा है, जिस तरह

0: कथन है पूरे शब्द को खास
1: जो पड़ताल है जिसन पड़ताल गुरुमातंत्र किया जाता है उसका भाव है कि ताल नू बदल के गायन करना जिवें हुण पहला जो रहाओ है वो ध्रुपद ताल च आया है हुण ताल बदल गया है इस नू असीं दीप चंदी कहने हैं 14 सुर मात्र का ताल है ताल बदल गया है इस नू पड़ताल कहांगे और श्री गुरु महाराज जी ने पड़ताल भी बड़े शब्द उच्चारण किए ने तो आप जरा इसका भी रस थोड़ा जिहा लो।

नक्षत्र वीणा का एक स्वर है दीन, बिरना जो है ये सितार का स्वर है, बिरना तिरना सितार वजद और दीन जड़ा है विचित्र वीणा में वजद, यह साजा के दर्शन कराए ने।

रोग पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेल धर्म अपो अपनी सारे जपो जिन्नी नाम गए मशक्त।

बाबे फिटके से फिटे गुरु बाबे फिटके से फिटे गुरु अंगल की ते कुआरे गुरु तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हाथ के ना विचारे गुरु चौथी

हमारी जेहबा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम बड अगम अथाह।

हमारी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कही है जेबा एक तू समरथ बजा मेरी मत थोड़ी रा मेरी मत थोड़ी हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी तू सम

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पावन उपदेश जय देव नामा विप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज भगत जयदेव का जिक्र करते हैं और ये पौड़ी भाई गुरदास जी की उच्चारण की प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज धुन गावे। भगत जयदेव जड़े उस परमात्मा दी प्रेमा भगती करते हैं जिन्हां ने गीत गोबिंद ग्रंथ लिखे है। भगत जयदेव की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच दर्ज है। जदों भी आप गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मत्था टेकदे हां भगत जयदेव नूं भी असी मत्था टेकदे हां। भगत जयदेव बंगाल दे विच पैदा होए ए ब्राह्मण सन और भगत जी बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच बयान करदे हां। अज आपां भगत जयदेव जी दे बारे विचार करांगे। आओ पहला इन्हां पंक्तियां नूं सारे रल के पढ़िए। प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज धुन गावै।

प्यास लगी पर लागे जाके कोई पिंड नहीं कोई पानी नहीं, गर्मी नाल बेसुरत होके धरती ते डिग पए। ते साहब जी बाणी विच बयान करदे ने, भगत जना की हर जीव राखै तुर तू रखदा आया राम। वो भगतां दे नाल वसदा है, भगत डिगा ते कृष्ण जी महाराज एक गवाले दा रूप धार के ते कोल आए, हाथ विच दुध दा कड़वा है, भगत दे मुंह विच दुध पाया, होश आई ते भगत जी हैरान होके पुछदे ने, काका तू कौन है कित्थों आया, ये ते जंगल है, ना इत्थे कोई बंदा ना बंदे दी जात ना कोई घर। कृष्ण जी महाराज ने देखिया कि भगत होश विच आ चुका है, मेरा कार्ज हो गया। कहन लगे ओ देख तेरे पिछले पासे साडा पिंड है, उत्थे मेरियां गावां चरदियां ने। ते भगत जी कहंदे ने हुणे ही मैं इधर

संग हाथ जोर जोर कहूं, श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर कहूं, आपके वचन की प्रतीत कौन मानगो। श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर

महाराज कलगीधर पिता ने भाई नंद लाल नूं कहा भाई आ तैनू दसीए भी साडे रूप केड़े केड़े ने केड़े रूप दे तुसी अज तक दर्शन कीते ने ते केड़े दे दर्शन नहीं कीते ते केड़े दे आद जगाद तुसी दर्शन करने ने।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे, भावें पिकर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्याप रहा परमात्मा वाहिगुरु सच्चे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा। इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख देख को कह न सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

मैं तेन एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा गुरु ग्रंथ साहिब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरा परा हो जाए समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बेदबी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करते कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी हुंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहिब दे अंगां नूं ला दिंदे आ, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी दे पवित्र चेहरे नूं साडा मैला हथ लग। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज नूं हाजिर गुरु मनोगे ते साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेअदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहिब नूं मत्था टेके हाजरा गुरु मने। अगले वचन साहिब सचे पातशाह जी ने कहे।

ऐ मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सैं हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़ मैं तेरा शिवरन करांगा तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला तू क्या सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा सत संगत बह के हर नाम दिया सा तू भूल गया वह दे पै गए हनेरे। ओए सुन मन गाफल पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

कि हे निरंकार साडे कलयुगी जीवां दा सुभाई ऐसा है कि जेड़ा हर वेले साडी रख्या करदा है, हर वेले साडे नाल है, जिदे सदके असी ए संसार दे नजारे संसार दे खेल वेख रहे हां, ओ सानू याद नहीं रहा, असी भुल गए हां उसनू। जेड़ियां वस्तुआं सानू तोड़दियां हन असले नालों परमेश्वर नालों, उना वैरियां नाल असी प्यार पा लिया, जिना ने साढ़े नाल नहीं चलना उना नाल तां प्रीतां पा लिया, जेड़ा हर वेले नाल है उनू विसार छड्डिया। संग सहाई सो आवै ना चीत, जो बैराई तांस्यों प्रीत, बलुआ के ग्रह भीतर बसै। ए रेत दी कंध है, ए जेड़ा साडा शरीर है ए रेत दा घर है, पहले बचपन फिर जवानी, जवानी ने बचपन नू खा जाना ते बुढ़ेपे ने जवानी नू खा जाना ते काल ने बुढ़ेपे नू खा जाना। ए रेत दा घर है, ए डिगद्या डिगद्या एक दिन मिट्टी दी ढेरी हो जाएगा। उस घर विच बह के भी असी कितने खेल कर रहे हैं। आ संसार भी एक रेत दा घर है, जिदे विच बह के असी तरह तरह दे खेल कर रहे हैं। वेखदे हां इना अखां दे वेखदियां वेखदियां अनेकां चले गए हन, पर असी अपने आप नूं समझदियां भई असी नहीं जाना। हजूर कहिंदे ने बलुआ के ग्रह भीतर वसै, रेत दे घर विच वस रिहा है। अणद केल माया रंग रसै, अनेकां केल करदा माया दे नाल, ओह भी रस माण लवां ओह भी स्वाद माण लवां। हजूर कहिंदे ने इस शरीर लई सब कुछ कर रहे हैं, जिदे आश्रे ते शरीर चल रहा है उस परमेश्वर का भी ध्यान धरिया कर, उस परमेश्वर का भी सिमरन करिया कर। जिदे आश्रे ते शरीर चल रहा है उनू तू भुखिया ही मार छड़िया, अज तक जो कुछ तू कीता अपने शरीर लई कीता, आत्मा लई कुछ नहीं कीता, आत्मा नू कदे कीर्तन का भोजन नहीं दिता, सिमरन दा पदार्थ नहीं छकाया, गुरु दी कृपा दे वस्त्र नहीं पहनाए, सत संगत दी सुगंधी कदे नहीं लाई उस आत्मा नूं। तू शरीर लई तां तू बहुत कुछ कीता, इस लई बलुआ के ग्रह भीतर वसै, अणद केल माया रंग रसै, दृढ़ कर माने मने प्रतीत। ए समझदा ए प्रीतां मेरियां सचियां प्रीतां हन, पर काल ना आवे मूड़े चीत, ए नहीं पता जदों अकाल पुरख वाहिगुरु दा सदा आ जाना है, काल ने आ जाना है, ये शरीर तां मिट्टी दी ढेरी हो जाएगा। इसलिए भाई उदा नाम जपया कर, उदा सिमरन करिया कर, जिस वाहिगुरु ने तैनू इतनियां बख्शिशां कीतियां हन। गुरु अर्जन देव पातशाह सानू अरदास करन दी जाच दस रहे हन ते आप कर रहे हन, जिस तरह मास्टर पहला आप पहाड़े बोलदा है फिर विद्यार्थी बोलते हैं, गुरु अर्जन देव पातशाह भी साडे ते उपकार करते हुए कहते हैं आओ भाई तुसी भी अरदास करो, मैं भी तुहाडे लई अरदास।

कुंवारी बन जा, खनिए बन जा, तो साहिब के नामी ऐ परमेश्वर मैं तेरे तुवारी, तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान कर देगा, आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चलिए। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नूं मिले, नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए।

तानो गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पास भाई अजय राव अपनी सहुरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने हां पर ओह रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते है भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते इन्होंने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानक जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब की याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब का उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असी भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असी भी जी नहीं सकदे।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी राह पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे राय पोए दी तलवंडी दा राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार। इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान नहीं अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलिया सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग कुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रख दी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच एक खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और वो प्यारे जड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो, बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन हे नहीं हो सकता। सत्संग ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है तां कि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा? चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जिहड़ा चंगा पति ना बन सके है, चंगा पिता ना बन सके है, जिहड़ा चंगा पुत्र ना बन सके है, जिहड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके है, सत संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान नु दुनिया विच भेजे है और इंसान विच अपना नूर अपनी जोत रखी। देखे आ इंसान दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नु स्वर्ग बना सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नु प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखी, साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नु प्यार देंगे, लोकां नु प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

फिर कुछ मंगन दी लोड़ नहीं रही। ओ दाता वंडन वाले हो गए जिन्हां ने दातार नु मंग लिया। नौ प्रकार दी भगती दसी है और सारिया भगतियां विचों उत्तम भगती है कलयुग दे विच। कलयुग में कीर्तन प्रधाना गुरमुख जपिए लाए त्याना। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जाग दी जोत जुगो जुग अटल सतगुरु जी बख्शिश कर रहे हैं कि भगतियां विचों प्रधान भगती है। जपा सिर जप है, तपा सिर तप है, करमन सिर कर्म है। जो सत संगत विच बह के कीर्तन दी समाधि ला के जपना श्री वाहिगुरु उत्तम भगती है। कीर्तन दी भगती आख्या जिन्हां ने कीर्तन विच समाधि जोड़ ली मन जोड़ लिया वो आप ही नहीं तरे। आप तरे सगले कुल तारे सारियां कुला उन्हां दियां तर गईयां। हर दरगह पत स्यों जाएंदा संसार विच भी उन्हां दी जय जयकार ते दरगाह विच भी फिर रे रे दरगह कहे ना को। आओ बैठ आदर सब देव वो आदरणीय हो गए भाई जिन्हां ने गुरु को नो सिफत।

फिर गुरु एथे भी सहायता करता है ते दरगाह विच भी सहायता करता है। जे नाम जप के संसार विच गुरु सहायता नहीं करेगा तो फिर दरगाह विच कौन करेगा भाई। कश्मीर दे रहन वाले संत माधव दास जी होए हैं, गुरु चरणा विच रह के सेवा सिमरन कीता, नाम दी दात प्राप्त करके आप कश्मीर विखे गुरु घर दा प्रचार कर दे रहे और ऐसी मिथी कथा करते सी, एदा मन जोड़ दे सी लोगां दा संगतां दा के रात नू दो दो वज जाने, आप दा मन भी जुड़िया रहना ते संगत भी एंज जुड़ी रहनी जिवें कोई साह ही नहीं ले रहा। प्रभु दी नेत ऐसी होई क्योंकि उसने अपने भगतां दी जय जयकार करानी है, कोई ना कोई व्यौंत बन जाती है, कोई ना कोई कारण बन जाता है। उस शहर विच कश्मीर शहर विच चोरी हो गई ते जिन्हां दी चोरी होई सी ओ मिल ना सकी राजे अगे, उन्होंने फरियाद कीती महाराज लोकी अद्धी अद्धी रात तक जागदे रहिंदे आ ते पता कोई नहीं लगदा भाई चोर केड़ा ते साध केड़ा। तां राजे ने ऐलान कर दिता भाई जो 11 बजे तो बाद कोई जागेगा शहर विच फिरेगा उसनू मौत दा दंड दिता जाएगा, मौत दे घाट उतारिया जाएगा। तां भाई माधव दास जी दियां संगतां बेनती करन लगियां महाराज कृपा करो हुण कथा दा टाइम बदलो ते 11 बजे तो पहला पहला भोग पा दिया करो ताकि संगत अपने घरों घरी पहुंच सके। एक वेरा ऐसा कोई बचन चलिया साखी चली के लेट हो गए कथा कर दिया संत माधव दास जी, संगतां विचों कोई एक दो बंदे उठे होर फिर उन्हां नू वेख के 10 बंदे उठ गए। एक नौजवान बच्चा जो सदा कथा तो बाद महापुरखां दी आग्या लेके जाया करदा सी, सारी संगत उठ गई पर वो बैठा रहा। कथा दी समाप्ति हुई महापुरखां पासों आग्या लेके जा रहा सी घर वल ते सिपाहियां ने पकड़ लिया भाई तू हुक्म अदूली कीती है तू दंड दे लायक है, उन्होंने पकड़ के जेल विच पा दिता। दिन चढ़िया राजे दे पेश कीता महाराज इसने तुहाडे हुक्म दी अदूली कीती है कि दंड दे लायक है। क्यों भाई कोई तेरा परिवार कोई माता पिता है? हां महाराज है। राजे ने घर वालियां नू बुलाया भाई इसने हुक्म अदूली कीती है इनू मौत दी सजा देन लगिया कोई इतराज ता नहीं? घर वाले कहन लगे ए ते अगे भी घर कोई नहीं आउंदा जदों मर्जी है चला जांदा सतसंग विच उत्थे पता नहीं की करदा है, जो मर्जी जे करो ए साडा कुछ नहीं लगदा। स्त्री और बच्चिया ने भी कुछ ऐसे ही बचन कहे भाई ये साडे तां कम आउंदा नहीं, कदे कोई 4 पैसे कमा के नहीं लियांदा। बच्चे कहन लगे कदे कोई चीज नहीं इसने सानू लिया दिती ते कदा पिता है, जो मर्जी जे करो। ते राजा पुछन लगा इस नौजवान नू क्यों भाई कोई तेरा होर भी रिश्तेदार है? कहन लगा जी

अखो सतनाम श्री श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज उन्हां दी रसना चों निकलिया होया महान फैसला साच कहूं सुन लेओ सवे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सेवा ते सिमरन दो चीजां ने। दास बैठा बैठा कीर्तन करदे ही सोच रहा सी जो सिमरन है उनू गाउना ते उनू सुनना ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਗਾਵੀਏ ਸੁਣੀਏ ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਉ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਉ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਉ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਭਾਉ ਹੋਵੇ जिस सेवा नूं लै लईए ते तां वी महाराज जी दा फुरमान है सतगुरु की सेवा सफल है शर्त जे को करे चित लाए। इहदे च वी चित लगा प्रेम होवे फिर आ कृपा वरसदी है मन चिंदिया फल पावना ते होमे विच्छों जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सेवा बारे भी सिमरन बारे भी सतगुरु जी दे फैसले इहदे विच प्रेम होवे। चार तरह दे जीव धरती ते वसदे ने। वीरवार दे सत्संग विच रूटीन विच आए हो गुरु नानक पातशाह दी दुकान दे उत्तों जिथे जिथे जगह मिले बैठ के सौदा खरीदना जरूर मन दी पत्री फरोलनी के इना चारां विच्चों असी किथे पहुंचे हां। चार तरह दे जीव ने धरती ते एक है मिल क्लास एक थर्ड क्लास एक मध्यम क्लास एक उत्तम क्लास। एक मिल एक थर्ड एक मध्यम एक उत्तम। निल कौन ने जिन्हां नूं बिल्कुल रब वाले पासे दी ना लगन है ना ज्ञान है बिल्कुल निल है ही नहीं किसे खाते च। ओ जीव खाली आउंदे ने खाली चले जांदे ने। थोड़ा जा नक्शा वेखना होवे ते निल क्लास वालियां दा श्री गुरु तेग बहादुर महाराज मेरे पोरियां च बैठ के बंदगी करन वाले चित आया ते दुनिया नूं तारन लई भी निकले ने। एक पंधेरी नगर है सतगुरु महाराज दे सिखां ने जदों उत्थों दे प्रबंधकां नूं सुनिया दिता वी नौवें पातशाह आए ने गुरु नानक दी जोत। उन्हां ने हल्के लफज बोले
ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਦਿਲ ਵਿਚ ਨਾ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਵਾਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਓ। ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਵਾਨ ਰਾਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਇਹ ਤਖ਼ਤ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤਖ਼ਤੇ ਤੇ ਵੀ ਲਟਕਾ ਦੇਵੇ। ਦੋ ਮਿੰਟ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਨਾਨਕ।

नाहीं प्रभ सब किश तेरा। ईगे निर्गुण उगे सरगुण केल करत विच स्वामी मेरा। बेनती कर रहा है भाई नंद लाल कलगीधर सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते ते दिल दे बैठा, क्योंकि जिथे मन मनना हुंदा उथे पहली नजर विच मन मन जांदा है। भाई नंद लाल ने जदों कलगीधर सच्चे पातशाह दे दर्शन कीते ते मन मन गए। अज मंग रहे साहब कलगीधर सच्चे पातशाह दे चरण फड़ के एक अमोलक दात मंग रहे। हजूर कलगीधर पातशाह सिंघासन ते बैठे हन, गल पल्ला पाया भाई नंद लाल ने ता की मंगे है। गरीब नवाज जे तुठे हो ता एक नजर मेर दी करियो, एक मेर दी निगाह जे मेरे वाल चा करें। कया जान बदल विच देसा एक नजर मेर दी करियो। गरीब नवाज जे एक निगाह मेरे वल मेर दी करो ते इस दे बदले मैं अपनी जिंद जान तुहाडे चरणा विच पेटा कर दें।

देहो दयाल प्रभ चित तुम्हें अरादा। हे वाहिगुरु मैनू ऐसी मत दे कि मैं दिन रात तेरा नाम जपा सतना। साध संगत तुसी भी जपो श्री वाह। नाम दा कितना फल है, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। आखिया नाम जपेगा मिलेगा की। गुरु अर्जन देव सचे पातशाह अपनी बाणी विच फरमान करदे हन, गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे। सुखां नूं लभदा सुखां दी खातर की कुछ करदा फिरदा, पर पता सुख मिलदा किवें है और किसनूं मिलदा। आखिया जो कोई जपदा सतनाम। पर शर्त है अपने आप नूं मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कुछ बनना चाहना, मालक दे दर तो खुशी लेना चाहना, गुरु नानक दी कृपा दा पात्र बनना चाहना, तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर, जिन्ना चिर दाना मिट्टी विच नहीं मिलदा उगदा नहीं, कुछ फल नहीं मिलदा। इसे तरह हजूर कलगीधर सचे पातशाह ने नंद लाल दी होमे खिंच लई ते अंदर तूं दा निवास कर दिता। हुण जिधर भी नंद लाल वेखदा है हुण कलगी वाला ही नजर आउंदा है। इधर भाई नंद लाल ते कृपा होई ते उधर गुरु नानक सचे पातशाह दा ओ सिख राजा सुगड़ सैन हुण राज विच रहिंदियां होइयां वी, राज भाग दे सुख माणदियां होइयां वी, अंदर हर वेले इको ही गल फिरदी है, इको ही वचन करदा है। राज भाग अपना नहीं समझदा।

संत सन जो जन पर सो जने उतर नहारे संत की निंदा नानका बहुर भौरे अवतार अष्टपदी संत के दुखन आजा कटाए संत के दुखन जमते नहीं छुटाए संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होई मलीन संत के दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरे संत के दुखन ते मुख पावे संतन के दुखन काग जो लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिविध जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलाए संत के दुखन सब को छलाए संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी का थौ को नाहे नानक संत पावे ता ओए पी गत पाहे संत का निंदक महत ताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख मैं दोख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित्र संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को दान लागे संत के दुखी को सब त्याग है संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख ते तरह संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता लय मिलाए संत का दुखी अदबीज ते टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को

मन मैं ना गुरमत, गुरमत मैं ना मन, नेचल होए ना उन मन लिवलाई, अंग अंग भंग रंग।

तेरे बारे सुनदा समझदा मैं मनदा जो हम अधम कर्म कह पतित पहे माड़े कमा करके असी तो पापी हो गए पर तेरा भी तो नाम पतित पावन प्रभ नाम प्रगटायो है तेन तो लोग कहते ने पापियां नू पवित्र करन वाले जो पहे दुखी अर दीन पर चीन लग पुराने माड़े कर्मा करके दुखी हो गए कि तेरा भी तो ना दुख भजन दीन दुख भजन बिरद बिरदायो है तेरा भी तो सुभा पुराना है कि दीना दे दुख दूर करदा है जो ग्रसे अर्क सुत नरक निवासी पहे माड़े कमा दे बंधन च पए हुए असी जूदे ही नरक च पै गए कुछ तो होंगे ने मरण तो बाद नरकां च जाणगे ऐसा सोची बैठे नरक तो डरदे ने पर मेरे माड़े कमां ने तो मैनू इत्थे ही नरक बना के रख दिता हिरदे विच नरक बन गया घर च नरक बन गया जीवन की जुगत होवे ते घर स्वर्ग बन जांदा हिरदा ही स्वर्ग बन जांदा जीवन का ढंग ठीक ना होवे एक हिरदा की ते एक घर की आले दुआले नूं बंदा नरक बना के रख दिंदा मरण तो बाद ते नरक दीआं गल्लां इक पासे जीवन विच भी नरक स्वर्ग चल रहे कुछ ऐसे भी ने जेड़े कंडियां दी सेज ते भी स्वर्ग बना बैंदे ते कुछ ऐसे भी ने माड़े कम्मां वाले मेरे वर्गे जेड़े फुल्लां दी सेज ते भी नरक खड़ा कर लैंदे मेरी करनी तां इस तरह दी है मैं तां नरक निवासी हो गया मैं नरक बना लिया मैं जूदा ही नरक च पै गया पर नरक निवारण जगत जस गाया लोकी तेरा जस गाउंदे ने तू नरकां विचों कढ लैण दी समर्था वाला ते नाले इक गल होर है संसार दीआं गल्लां होर ने निरंकार दीआं गल्लां होर सुणीआं ने संसार दी गल तां इह है कि हर कोई यह सोचता है कि मेरे नाल किसने की कीता है ते मैं उहदे नाल की करां जरा जिहा प्रतीत हो जावे कि मेरे नाल किसी ने बुरा कीता ते बंदा व्यौंता करदा है कि हुण मैं किहड़े वेले उहनूं चार हथ विखावां ते जे किते इह अहसास हो जावे महसूस हो जावे किसी ने मेरे नाल भला कीता ते बंदा चाहुंदा इह भाजी हुण कदों मुड़ां पर इह तां संसारियां दीआं गल्लां ने हिसाब रखण वालिआं दीआं गल्लां ने ते तेरे नाल तां हिसाब नहीं रह सकदा क्योंकि जितने तू गुण मेरे नाल कीते ने जिन्ने तू मेरे ते परपकार कीते ने जे मैं उहनां दा हिसाब करन बह जावां ते शर्म नाल पानी पानी हो जाना कि इन्ना तेरा परपकार

बड़ी डूंगी बाज है। साड़ी कीती सेवा सिमरण ते गुरु की खुशी की मोहर लग गई है, किवें पता लगेगा? गुस्सा ना करियो, तुसी इत्थे घंटा डेढ़ आए हो, दो घंटे कीर्तन, गुरु की मोहर इत्थे लगी कि नहीं लगी, किवें पता लगेगा? आपको सतना